तेरी ये जवानी को मिला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े

के आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिखाए हैं। निगम शिखादिक कथित नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान।

संग संग लागे दुख भागे अंग संग अंग संग अंग संग अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे प्राण मन तन सब हरे।

मन इच पाई प्रभु ते आई संजोग सा शुभ गणया बिनवंत नानक मिले श्रीधर।

कोई भी रसना बांझी ना रहे, क्योंकि गुरु नानक दे करो जे कोई दाता मांगदा है ते दाता मिलदियां ने, दाते वालियां नूं दाता भी मिल जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करदे सन, कहिंदे ऐ गुरसिख चात मार, धियां पुत्र मंगे ओह भी मिल गया, धन दौलत मंगिया ओह भी मिल गया, सोहणे कारोबार लई अरदासां कीतियां ओह भी मिल गए। भी ऐ गुरसिखा जे किते तू गुरु नानक मंगिया हुंदा तेनू गुरु नानक भी मिल जाणा सी। आओ भई झोली विछा के

परम सत्कार योग सत्संग आओ सारे प्यार नाल पहला वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करिए, जुड़िए गुरु नानक के चरणों विच। आप वड्डे भागां वाले हो जो अमृत वेले तो इस वेले तक सतगुरां की पावन पवित्र गोद विच बह के आ रस मान रहे हो, यह वड्डे भागां करके नसीब हुंदा है। सो हुक्म होया कि पहले वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करवाओ। सो सेवक की आवाज जिथों तक पुज रही है सारे प्यार नाल जपो, कोई भी रसना नाम जपन तो वांझी ना रह जाए।

कला आधार जग में परवर निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट हुए ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहे। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सीना गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़ दे हो, असी की करांगे।

कैसा पुल है। भाई साहब कहंदे ने एक वारी नहीं पांच वारी गंगा चला जा, पांच पांच वारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे। एक सिख नूं इशनान करा देवे, एक सिख नूं नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के दे देवे, उहदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहंदे ने सिख नूं प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नूं पिआउणा चाहीदा, पर गुरु के सिख नूं गुरु शब्द दी विचार वाले नूं गुरु प्यार वाले नूं आदर सत्कार नाल पानी पिया दित्ता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा होगी, कुरुक्षेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा होगी। जे कितें सिख नूं प्रशादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहंदे ने एक होर वड्डा पुन भी, एदों भी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी। कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना। एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नूं शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदों वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नूं शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द के लड़ ला दे। एक होर गल कहंदे ने साधां दे दर्शन करन वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करन वास्ते, पुन्न आत्मा दे दर्शन करन वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करन जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नूं मुठियां भर के सुआ देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है। गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया। कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाए, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के वचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास सब सच्चे पातशाह दे वचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान हो हथ बन्ने। महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख की खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे। महाराज सच्चा पातशाह सिख की खुशी विच

गुजरी जी ने जदो अपने नन्ने पोत्यां दी दर्दनाक वार्ता सुनी ता असह कष्ट दे सदमे नाल उन्हां दी आत्मा भी परवाज कर गई, जिस विचों ए बोल निकले कि मेरे प्यारे लाडले बच्चियो, मेरे लाल दे लालो, जरा ठहरना, मैं तुहानू लोरियां दे के थपकियां दे के सवाउण लई तुहाडे कोल उड के आ रही हां। अज किथे ने वो मरदूद मर्द जिन्ना ने चंद टकियां दी खातर

प्रकार दी भगती दसी है और सारिया भगतियां विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जाग दी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतियां विचों प्रधान भगती है। जपा सिर जप है, तपा सिर तप है, करमन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहेगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्हां ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली, मन जोड़ लिया, वो आप ही नहीं तरे, आप तरे सगले कुल तारे। सारियां कुलां उन्हां दियां तर गईयां, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार, ते दरगाह विच भी फिर रे रे दरगह कहे ना को। आओ बैठ आदर सब देव, वो आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु कोलों सिफत।

देव जी ने शब्द कीर्तन द्वारा इस जलंदे जगत नू तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी। रहमता परी इस परंपरा नू समूह गुरु साहबान ने सदियां तो सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजों स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वक्-वक् रागां, गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नू वक्-वक् रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा अते समूह संगतां दे सहयोग द्वारा संत बाबा सुच्चा सिंह जी ज्वदी टकसाल दी अगवाई विच विस्मादनाद संस्था गुरमत संगीत दे शुद्ध ते मौलिक स्वरूप नू प्रचारण दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपा अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाब विच करते हो तो आप धनता जो हो जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चिया पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल दा समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, उह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकेंगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कभी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उलटाई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेशां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

के जो तत्ती तवी है, इस तवी ते बैठ के मैं शहीदी दे पूरने पाने ने, इसे तवी ते बैठ के मैं शहीदी दी नींह रखनी है। ते जदों समा आ गया, साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जदों इस तवी ते समाधि लाउण लगे, ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे अंदर इन्नी शांति सी, अग दी तपश ठंडी होण लगी, ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह

दाता अनेक हैं। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदा है दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़त दी, जुड़ गए दाता दे नाल। साहब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने जिस भावे तिस दी, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने जो भावे दे देवे। भाई साहब जी का एक बचन बड़ा कीमती है, आप दी झोली पावा, क्योंकि सतगुर बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही मालिक हाथ हन। जी प्राण तन तन दिए दीने रस भोग। हुण दातां दा जिक्र है, केड़ी केड़ी दात।